0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देव पुरुष महादेव की जय।
1: ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

सो हम देवपुरी श्री महादेव की जय, अलकपुरी जी महादेव की जय, दीप नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। So, all dear ones,

0: मैं अर्ज करूँ। आई रिक्वेस्ट गुरुदेव। व्हाट डू वी रिक्वेस्ट? वी विल हियर।
1: Prosím Gurudeva, nebo žádám Gurudeva, a o co, to se dozvíme v Paťanu.

ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवाद देवदेवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय।

0: शैल पुरजी महादेव की जय, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, सुदीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुरजी गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, सब संत ऋषिमुनि महात्माओं की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्सनातन धर्म की जय, आप सब भक्तों की जय, हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
1: पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी आतर पुरी जी महाराज की जय।

गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

0: हो गुरुदेव,
1: ओ गुरुदेव
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी,
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: सी ब्रह्मा,
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर्स,
1: ब्रह्मा, který je stvořitel,
0: ब्रह्मा, विष्णु, नो द गॉड विष्णु, मेनी मेनी टाइम्स, मेनी मेनी, ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा,
1: si Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krishna.
0: Aap hi Brahma, aap hi Vishnu, aap ho Kailas Kevasi, and O Gurudev, you are also residing in the Kailas.
1: O Gurudev, ty také přebýváš na Kailáši.
0: You are residing there.
1: Tam žiješ.
0: Aap ho Narad, aap ho Sarad, aap ho Ses Sukrasi. Aap ho Narad, aap ho Sarad, aap ho Ses Sukrasi. Aap ho hi, aap ho Dhyani, aap ho Gyani, आप हो योग प्रकाशी, यू आर इज ब्रह्मा, आप विष्णु, एंड यू आर कैलाश, लिविंग इन द हिमालया इन कैलाश. आप हो नारद, ऑल्सो यू आर द नारद ऋषि,
1: सीता के नारद ऋषि.
0: आप हो शारद, एंड आप हो शेष शुक्राशि. शेष शुक्राशि is where this snake, very big, under the ocean, and there where Vishnu is residing.
1: Sesukrasi je ten velký had pod oceánem a tam žije Vishnu.
0: Ses. And the ses means also what remains after all, but still there remains.
1: A ses je také to, co potom všem zůstane.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी. आप हो ध्यानी, हो महाप्रभु जी,
1: ओ महाप्रभु जी,
0: आप ही ध्यानी, यू हैव मेडिटेशन, यू नो दैट, ओ देवपुरी जी,
1: माश मेडिटेशन, znáš to, ओ देवपुरी जी.
0: आप हो ज्ञानी, यू आर द नॉलेज,
1: सी poznání.
0: आप हो योग प्रकाशा,

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं।

हरि ओम तस्स। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सद्गुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।